0: सभी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्वार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम।

0: तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसम्बन्धं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः।
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती। आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारत वियतनाम सम्बन्धस्य उन्नत व्यापक रणनीतिक सहयोगस्य अभिवर्धनम् न केवलं द्विपक्षीय सहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपितु क्षेत्रे शान्ति समृद्धौ अपि योगदानं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान अद्य जयपुरे संयुक्त सेनापति सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य शोभां वर्धयिष्यतः। द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अस्य मुख्य विषयो वर्तते नूतन क्षेत्रेषु सैन्य क्षमता इति। एकस्मिन् उद्वेगकर घटनायां पश्चिम बंगालस्य उत्तर चतुर्विंशति परगण मण्डलस्य मध्यग्रामे भाजपा दलस्य नेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य निकट सहायक चन्द्रनाथ रथ अज्ञात आक्रमणकारिभिः भुशुण्डिकया प्रहृतः। समाचारानुसारं गतरात्रौ दोहरिया नगरे मोटरबाइक चालकाः दुष्टाः आततायिनः तस्य कार्यानस्य उपरि यथेच्छं गोलिका प्रहारं कृतवन्तः। चन्द्रनाथं तत्क्षणमेव स्थानीय चिकित्सालये प्रेषितः परन्तु सः मृतः इति घोषितः। तस्य चालकः बुद्धदेव बेरा अपि गोलिकाभिः बहुधा व्रणितः अथ गंभीरस्थितौ कोलकाता चिकित्सालये स्थानान्तरितः वर्तते। बिहारस्य मुख्यमंत्री साम्राट चौधरी अद्य तस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पटनानगरस्य गांधी मैदानम् इत्यत्र अद्य मध्याह्ने द्वादशवादने आयोजिष्यमाणे शपथग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह एनडीए इति राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः च भागं गृहीष्यन्ति। अस्माकं संवाददात्रा सूचितं यत् पूर्व सर्वकारे अनुसृतस्य सूत्रस्य आधारेण मंत्रिमंडल विस्तारः क्रियते। प्रायः 15 भाजपा विधायकाः 14 जेडीयू विधायकाः मंत्रिरूपेण शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः परमाबीरो इत्यत्र तस्य सूरीनाम समकक्षेन मेलविन बोबा इत्यनेन सह मिलितवान्। भारतीय सूरीनाम प्रतिनिधि मंडलानि नवम संयुक्त आयोग सभायां भारत सूरीनाम संबंधानां व्यापक समीक्षायाः आयोजनं कृतवन्तः। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पंजाब किंग्स दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये लखनऊ नगरस्य भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी कटक शुणु आम आज कार्यक्रम सूचना आमर स्वास्थ्य सका 7:10 आलोचना रही शिशुटीर मुंड बड़ होते ए संपर्क आलोचना करेंगे डाक्तर दुर्योधन सामल प्रभात परिक्रमा सका 7:25 कथिका सका 7:35 आलोचना निसंगतार नीरव नवेदन आलोचना कर डॉक्टर प्रसन्न कुमार बराल सजफुल सका 7:40 कंठदान करिछन्ति कुमकुम मिश्र एवं सुनील कुमार मल्लिक संगीत प्रदीप कुमार राउत सका 8:30 प्रायोजित कार्यक्रम साधनार पृष्ठरे वैदेश विलासर 16 भाग सका 8:45 गीत गीतिका सका 9 नाटक माधवीलता दिन 10 रचना सुकामी।

0: समृद्धि आणन्तु।
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारितारे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: शेषरे द्वैतकंठरे सुनील कुमार मल्लिक एवं कुमकुम मिश्र गाइछन्ति रजनीकांत नायकंकर अन्यायक रचना। तुमे थिले मु अछि, मु थिले तुमे, दुनियाटा भल लागे, खुशी थिले आमे।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की

0: लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से दो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर सिंह महतो भी मौजूद रहे। श्रमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर

0: चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नई चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम तीन दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन सीआईआई द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉ जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमरीका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. my becoming a writer the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to village to know that language.

0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: फरद पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary to expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah among host of dignitaries to attend swearing-in ceremony in Patna. Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party, Ram Vilas, and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अवस्थान परिवे स्वयं कोशलेश्वर तांकु सेनापति पदरे अभिषिक्त कराइबे
1: जय सेनापति नीरेन्द्र नारायण कर जय सेनापति नीरेन्द्र नारायण कर जय सेनापति नीरेन्द्र नारायण कर
2: कौन जे मामणी सेतिके बेळो नुआ सेनापति को ऊपर आखी फेरौना जे कौन चिन्ही पारुना
3: नाइल लतिका मो छेमति मने हला केबे केउटी ए मुह को देखला परे सेत में पूरा अनै रहतेली
2: सेई पिला बेळे राजू दन रे मने नाही कौन म कंडे पपड़ी जहा को आघात करितला अरे से पर हम पुरुना सेनापति को पुआ नीलु सांते
3: आ कहिबा दरकार नाइल लतिका सब मने पड़ी गला कंडे बाघर करिबा पई सब आयोजन कला बेळ को नीलु भाई आ चारुलता गुरुजी आश्रम को आकाश मल्लीफुल चली जाइले ना विलंब हबार मु खूब रागि जाइली नही लतिका
2: आत रागि जाइले नीलु सांत को देखा क्षणी तर कंडे फोपाड़ी
3: आहना लतिका मत यह सब पिलादिन स्मृति मन पड़े ना भारी लाज लगुच
2: कितु जे मामुणी से दिन तो नीलु सांत आपण आकाश मल्लि फूल आने गुरुजी आश्रम को जाते
3: मोर राग है नीलु भाई कहीं मत न नहीं चारुलता सहित गुरुजी आश्रम को जाते चारुलता तो अल्प दिन पाटनागड़ माई सहित आसला ना मुतर सबुदिन खेल साथी कि मत न नहीं
2: तापर तो आपन को नहीं नीलु सांते आउ दिन गुरुजी आश्रम को जाते नुहे
3: से तो शेष तापर चारुलता माई आगे कही लो माई माँ मणिमा को कही माँ मणिमा नीलु भाई सहित तो खेल को से दिन बारण कर माँ मणि चलीगले
2: हाँ तांक पचे पचे महाराज जीवन रक्षा पाई नीलु सांत पिता जीवन देले जो दिन नीलु सांते माँ का साथ कोशलगढ़ त्याग कर त्रितलगढ़ चलीगले आपण केमती विकल कांदी से जीवाक नदेबा लगे महाराज को अली करते मन अच्छे ना जेमा
3: सब मन अच्छे लतिका नीलु भाई पशी जान अदृश्य होगा पर्यंत मो राजनगर उपरे थाई बिकल हो कांदी मत जमी सबकि शून्य मन होता लो तेबे मुना ये कथा मन रखी कहलु लतिका नीलु भाई कौन पिलादिन कथा मन रखी थे
2: आरे पिलादिन कथा किए कौन पासुरी दे पारे जेमा तेबे जेमा मणि जदि पासुरी नहांती नीलु सांते केमती पासुरी दे थे जे ए तो ए देखिले जेमा से पाख तोरण पाखे नीलु सांते आ पंडित पुआ उदयन सांते जाउछंती जीपी डाके आणबी कि जे मामणी
3: ना थाओ कई छ देखिब
2: मले मोर आमे कोन करू छ जे हमर एते भय पिला दिने त केते संग साथी हेतिले अच्छा जे मामणी कर कोन इच्छा होनी भलो मंद टिके जानिबा पई मोर त काई भारी मन होची पिला दिने नीलेंद्र सांत घर को केते थरे जाय छे ताको मामते बहुत भल पांते केते स्नेह करंती भलो मंद खुवाई छंती अच्छा जेमा ए देखु ना महाराज तो उवास को पीछे कर सारे जी तो जुआ सब चलीगले आहा भय जे चल
3: हाउ तो मन जो चाहू जा डाक आणबु किंतु कही जेपरी जाणी न पारे कि देख न पारे तेब शुण लतिका चंचल आसबु मोटे डेरी कर
2: गली आसली बोली जान टे शुणी कि सांते
4: किए तुम्हें तमक तो मु चिन्ह पारुन किछि काम थेले मो पाखरे
2: बारे नीलु सांते आउ के कहितले सना मानि थांते हेले मो नीलु सांते मते चिन्ह पारुनांते सुनि जे पिला दिन रे जेति सांग साथी समस्त को चिन्ह पारल हेले मते केमते चिन्ह पारुन जे पिला दिन वासरे थिला बेले केते थोर तम घर को जाय छे मां का हाथ रे भल मंद खाइ छे नीलु भाई न बरे डाकि छे सांग साथी केते खेलु थिले ओहो तथापि चिन्ह पारु नांती हौ बाबा हेला मो परिचय मु निजे दौछि मु लतिका आउ जे मा मणिकर खास दासी
4: अरे अरे तू लतिका तो मा मरिगला परे तो बापा बाबाजी ही चली गले ना आ तू आसरे आई पाखरे रहिथुल ना कथा कथा के नाको कंदुरथुल ना

0: नीलेन्द्र नीलु कौन है धन ओसरु फेरला बेलू मन अणा कर कौन है बाप पुणी कौन विपद आसिक कोशल राज्य पुणी तते युद्ध करने को आदेश दे महाराजा
1: ना मा से किसी घटना नुहे तेब युद्ध को मुझे भय कै मा
0: तेज मन अणा कहीं समलेश्वरी मंदिर पुरोहित शुणी आसली काली माधवीर पाट मुदी विजयगढ़ राजपुत्र सहित बहुत स्थिर आहा महाराणी रत्नमंजरी जदि बंची था आनंद तेज तोर कौन है खुशी हवा बदल रे
1: महाराज कौशलेश्वर मत राज्यत्याग करने को आदेश दे आज रात्रि अवसान पूर्व मत कौशलगढ़ सीमा पार हो पड़ो ता नहले मते कठिन रु कठिन शास्ति दिहब
0: किंतु काहे कि बाप काहे कि इतो बड़ कठिन औ कठो हेले महाराजा कौशलेश्वर कि अपराध तू करिछु बाप
1: अपराध अति गुरुतर मा मु आउ राजजमा माधवीलता परस्पर को भलो पाइछु महाराज ए कथा जानिबा परे उत्क्षिप्त होइछन्ते
0: नीलेन्द्र काहे केबि तो ए कथा मते तू कहिनथिलु तो पई त्रितळगढ़र सेई छियोटी ना तर स्वप्न केते स्वप्न देखी माया लेखी से कड़े आत्महत्या कला आउ तू ते बड़ अपराध कर बसिलु
1: भल पाइबाटा कौन अपराध मा मु तो राजकुमारी को पिला दिन खेल साथी भाभी भूली जाइथिले से किंतु मते भूली नथिले मा जहा फल आज यही परिणति
0: मु विचारक नुहे रे बाप भल पाइबा अपराध कि नुहे से कथा मु जाने ना मु मा एतिकि बुझे तू मोर अंधर लौड़ी अल्प बयसर स्वामी हरा है तते नि मु बंची रही थी किंतु तू जुआड़े जीवु मते साथी रे नहीं जीवु तो बिना बंचीबा मरीबा मो पाई समान।

0: आकाशवाणी कटक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सार चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: अबुला गीत प्रथम शुणु भिकारी चरण बड़ कंठरे गीतटी गीत रचना अलेख चंद्र विश्वाला।

सबके पहले से मर्यादा पुरुष रामचंद्र अयोध्या राजा हेबे ए कथा सुनी अयोध्यार प्रजा मैंने अति आनंद विभोर हो आत्मराही नाचुचंती किपरी आत्मरा होती प्रजा मान अवस्था किपरी आपण मान विचार करिए महानाटक हनुमान दास प्रमाण कले।

他腾腾，他他腾他腾他。मोर पंडित मंडली विचार करिवे अयोध्या जनैका तरुणी बा स्त्रीलोक काखेरे गोटे सुनार कलसी बा गरा धरी पोखरी तुठरु जाई पानी गराई आणिबो एणु सुना गरा रे पानी आणिबा पई जाई मनरे विचार कला ए राती पाही गले काली सकाळ ए राज्य राम राज्य होइजो राम अभिषेक होई अयोध्या राजा हेबे एई कथा चिंता करू करू ता काखरु सुनार कलसी गली पड़िया पोखरी तुठ पाच रे ठंग ठंग शब्द करी पानी भीतरे भासी जाई ठ शब्द करूची ठीक है। इस समय रे रामंक भाग्य रे विधि और विधान कौन अच्छी अमर पूज्य गुरु पंडित रत्नाकर करो दुईटी स्वर्ण पदक पाई लेखंती कले

प्रणाली विचार करंतु एई समय रे शिव आविर्भाव होई कहिले हे लंकेश दुख दै काल को सुख मागिनियो जते बेले ए कथा कहि जमती एणु रावण कहिले हे प्रभु मोर जजमान कर हित साधन करी आपण बड़ दियंतु एई अवसर रे ठीक अग्नि देवता आसी आउ त्रिकोणाकृति शत्रु निधन होम कुंड रे आविर्भाव हेले होमे पूर्ण आहुति की दैन रघुपति की विदाय मागो असुर।

0: 사람도 사는 허리고로 명두 누카두라 해.
1: 순우들이 봐라. गायक महाशय थिले प्रसन्न कुमार मिश्र साथीमाने थिले अनन्त किशोर बेहेरा दामोदर खटुआ अजय मिश्र एवं प्रमोद मिश्र श्रोता बन्धु आपणमाने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 965 किलोहर्ट्ज तेबे श्रोता बन्धु आउ डेरी नकरि आरम्भ करिबा आपणमानंकर प्रिय कार्यक्रम तथा मोर प्रिय कार्यक्रम मंजुला मध्यान्न श्रोता बंधु एटी कही रखी जो श्रोता बंधु माने मन दुख करुछंती आमर एसएमएस गुड़िक बाजी पारला नहीं से माने आदम मन दुख करिबा उचित नहीं कारण अनेक समय रे कार्यक्रम समय अभाव जो आम एसएमएस गुड़िक बाकी रखी आपण माने जेते बेले दउछंती गोटिए घररु एसएमएस आसुची विभिन्न प्रकार ना पकई दउछंती सेमिति करंतुनि अन्य मानकर एसएमएस रहिजो पढाई परुनि सेथिपई आपण माने समस्ते गोटी एसएमएस रे समस्तक ना लिखिकि दियंतो आमे निश्चित भाबर ताको पढिबो आउ जेतेबेले भी दउछंती गोटी गीत को सबबेले अनुरोध करंतुनि विभिन्न प्रकार गीत अनुरोध करिकि दियंतो तेबे आरंभ करिबा प्रथम एसएमएस टी आसिची लिखिछंती राजेंद्र नना से केतेबेले को जागर तांकर ठिकणा दियंती नै तेबे आपण सुनिबाकु चाहिछंती मैंने दिल तुझको दिया कथा चित्रर गोटे गीत गीतटी गाइछंती उदित नारायण बलकाग्निक

एसएमएसटी करिसेंति श्यामा सुंदर बेहरा, सरोजनी बेहरा, विजयलक्ष्मी बेहरा, महम्मदपुर बिलाहाट्रु। आपण मैंने सुनवाक चाहते।

0: ଏଇଟିଶାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଜୁଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
2: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाशनाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। कल भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरु मावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है।

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: श्रंतु भट्टरा गीत परिवेशन करछंती जगन्नाथ भट्टरा एवं साथी
2: भतरा भाई भूनी माने कठोर परिश्रमी दिन सारा बिलरे कामधाम सारी संध्या समय रे गाँ दांड रे मेली हुई एमाने मन को आनंद करिबा निमन्ते नृत्य और संगीत परिवेशन करथांते निज ग्रामरु बाहरी निकटस्थ अन्य ग्रामरे अनुष्ठित हेतुवा यात्रा बाली किंबा नाटक देखिबाकु एमाने खूब भल पाइथांते से स्थान को धांगडा धांगडी माने मेली होई चली चली जाइथांते आमर आज कार्यक्रम आसंतु शुणिबा भतरा संप्रदायर भाई भूनी माने नाटक किंबा बाली देखि जिबा समय रे क्लांत दूर करिबा पई गाउथवा गीत परिवेशन करिछंती नवरंगपुर जिला भाटिका निकटस्थ जाग्निगुड़ा ग्रामर जगन्नाथ भत्रा एवं साथी

0: ଜଗନ୍ନାଥ ଭତ୍ର ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଭତ୍ରା ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो। ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
2: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 बने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: आरंभ करजु कार्यक्रम नारी महला

0: ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ମହଲ।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, एक रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है। आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे? बोले, मुझे भरोसा नहीं था।

0: reform governments in Tamil Nadu and Kerala. Government launches nationwide annual health checkup initiative for workers aged 40 years and above. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to face Royal Challengers Bengaluru in Lucknow this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
1: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया।

0: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण, भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम, भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्य विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरु मावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्रीय शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री

0: ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बैनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ER News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से 1 दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमरीकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राजेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
1: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला

0: लाचा खूंटी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: असंबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
0: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
1: जी,
0: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
0: जी
1: है
0: ना? बिल्कुल।
1: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
0: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
0: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
1: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या हैं?
0: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: जी, एक रोचक बात और जान देते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
0: जी,
1: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
0: जी,
1: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है। वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है?
1: ये देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
0: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
1: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
0: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
1: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है।
0: जी,
1: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
0: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
1: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
0: जी,
1: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
0: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
1: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां

0: भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है। माला की चांदी की पायल।
1: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
2: अरे माला तू।
1: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
3: बहन जी, डाकिया।
1: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
2: माला, यह तुम्हारे लिए है।
1: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
0: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियाँ। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
0: इस कार्यक्रम में राग गौर

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नि और शुद्ध नि प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौण मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं की ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। ये कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए।

0: बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सुनिले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେକରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
4: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को

0: देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: टीबी मुक्त भारत अभियान
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है एक रिपोर्ट
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नितिन गडकरी जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रीकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे एक रिपोर्ट
5: दिन की शुरुआत टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवीके नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज

0: सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश

0: proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure.
1: What followed was unprecedented in the history of the nation. India struck again and reached hundreds of kilometers into mainland Pakistan without even crossing the border. Defense Minister Rajnath Singh, while speaking about the operation, said,
2: "हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावल पिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
1: इंडियाज रिटेलिएटरी रेस्पॉन्स वॉज अनइमेजिनेबल फॉर द एनिमी। इट वॉज ट्रिगर्ड बाय द डेडली पहलगाम अटैक। ऑन April 22nd, टेरर स्ट्रक पहलगाम। Pakistan-backed attackers stormed a village, asked people their religion and killed them, resulting in the death of 26 people. It was a clear attempt to incite communal violence. This marked a shift from cross-border attacks to dividing India from within. In response, India launched Operation Sindoor to destroy the terror bases behind the attack. But Pakistan hit back harder. Over the next week, it used drones and shelling to target religious sites, the Shambhu Temple in Jammu, the Gurudwara in Poonch, and the Christian convents were attacked. These were not random strikes. These were part of a plan to break India's unity. To safeguard the honor of the nation, its military prowess roared. 11 major air bases were targeted.
3: Main Colonel Sofia Qureshi, POJK, ke targets main aapko batana chahungi. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप भिंबर, अब्बास कैंप कोटली। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, मरकज ताइबा मुरीद के, मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर।
1: इंडिया काउंटर्ड द एनिमी ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। द बैटल वॉज नॉट जस्ट ऑन द बॉर्डर्स, it was also the information warfare that was being fought. The officers of the Indian Armed Forces briefed the media every day. Air Marshal AK Bharti, while briefing the media, informed about why 11 air bases were chosen.
4: This was time to convey some message to our adversaries, and therefore a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakhar, sending a clear message that aggression will not be tolerated.
1: Nearly 20% of Pakistan's air capability was degraded before they could mount a response. This wasn't just about force. It was precision at a completely different level. Rafales, advanced strike systems and indigenous AI-enabled networks worked in perfect coordination, intercepting every incoming threat with speed and accuracy. Operation Sindoor was a significant demonstration of India's military and strategic power, executed through a combination of military and non-military means. This multidimensional operation effectively neutralized India's terrorist threats, deterred Pakistani aggression, and firmly enforced India's zero-tolerance policy towards terrorism. The operation maintained strategic restraint while gaining international support.
5: भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने

0: countrywide.
1: नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि जो एक नया ऐलान कैबिनेट की बैठक में हुआ है, उसके मायने क्या लगाए जाए, सरकार ने 5.0 इस स्कीम की क्यों मंजूरी दी है, इसका मुख्य उद्देश्य आप क्या देखते हैं?
2: ये जो आपने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, इसका मतलब ये इसका पांचवा चरण है ये। और इससे पहले ये जब कोविड का जब प्रॉब्लम आया था हमें 2020 में, उसी समय इसका पहला चरण का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसे 3-4 चरण आए हैं और हर बार क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की क्रेडिट लेने की जो क्षमता जो है उसमें एक कम पहुंचता है जब भी कोई क्राइसिस आती है। और यही जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है उससे जो तेलों के दाम बढ़ गए, उससे हमारे बहुत सारे जो इकाइयां हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो होती है, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होती हैं, जरूरतें जो होती हैं, उसको पूरे करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो ये स्कीम जो है ये करीबन जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है प्रधानतः, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट की जो एक गारंटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रेडिट ले रहा है तो उस क्रेडिट लेने में अगर लॉस हो जाए उस लोन में या लोन को वापस ना कर सके, उसकी जो रिस्क जो होती है उसकी गारंटी होती है। तो समय की जो असुविधा जो है कि इस समय रिस्क बढ़ जाती हैं और उससे क्या होता है कि अगर ये गारंटी नहीं मिले तो इंटरेस्ट रेट में बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट उससे कॉस्ट बढ़ जाता है उससे। तो सरकार ने ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 का जो ऐलान किया है, उससे सारे जो एमएसएमई सेक्टर के यूनिट जो हैं, हमारे देश में करीबन 7 करोड़ ऐसे संस्थाएं हैं जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, और वो 7 करोड़ जो इकाइयां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो करीबन देश की जीडीपी जो है, आर्थिक जो साइज जो है, उसकी करीब 30% होती है और एमएसएमई करीबन 45% हमारे एक्सपोर्ट्स करता है। तो इसका महत्वपूर्ण बहुत चीज है और उसके लिए सरकार ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ की जो लोन जो है उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका मतलब अगर 2.5 लाख करोड़ की जो अगर लोन में कुछ वापस करने में कोई दिक्कतें आती है तो वो समस्या इस गारंटी से पूर्ण होगी। करीबन 18,000 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो सरकार लेगी और 2.5 लाख करोड़ का जो लोन जो है वो लोन बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उनको देंगे। तो मोटी मोटी बात ये है कि एक तरफ एमएसएमई सेक्टर को एक गारंटी मिलेगी उनके लोन के ऊपर, और ये गारंटी 5,000 करोड़ की ये गारंटी जो एयरलाइन सेक्टर है उनको भी दी गई है, क्योंकि इस वेस्ट एशिया के क्राइसिस में जो एविएशन सेक्टर है उसको भी काफी बहुत धक्का पहुंचा है, तो उनके लिए भी 5,000 करोड़ के लोन के ऊपर गारंटी देने की एक प्रावधान किया गया है। और बाकी बिजनेस को वो भी उनको ये प्रावधान है। एमएसएमई सेक्टर में 100% की जो लोन जो है उसको गारंटी मिलेगी, पर बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ 90% की गारंटी मिलेगी। एयरलाइन सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको अगर गारंटी दी जाएगी उनमें भी 90% की गारंटी मिलेगी। पूरी बात यह है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस से कंपनियां को कॉस्ट में दिक्कतें आ रही है,

0: नौकरी को बरकरार रखने में दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक रिलीफ मेजर है और इससे मैं समझता हूं कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है और नौकरी को बरकरार रखने की जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं इस देश के, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा
1: जी और एक बहुत बड़ी राहत होगी खासतौर पर छोटी और मझोली उद्योग जगत के लिए। और जिस हिसाब से वेस्ट एशिया क्राइसिस भारत पर एक छोटा असर देखने को जरूर मिल रहा था कि कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें आ रही थी, साथ ही साथ जो कच्चे माल के आयात की दिक्कतें होती थी वो बढ़ती जा रही थी और इन जगहों पर जो एक निर्यात होता है वो भी उस मुकाबले नहीं हो पा रहा था। निर्यात हो रहा था जरूर लेकिन उस मुकाबले नहीं हो रहा था। तो अब आपको क्या लगता है एक सहारा मिलेगा और सहारा के बाद इंडस्ट्री जो है एक तरह से अपने पैरों पर दोबारा से मजबूती से खड़े होने में कामयाब हो पाएगी?
0: इसमें सहारा तो जरूर मिलेगा क्योंकि जैसे इस लोन की गारंटी के साथ साथ ये जो एक 7 साल की जो लोन दी जाएगी इसमें ये कवरेज होगा उसका, ये एयरलाइन के लिए है और जो एमएसएमई कंपनियां जो हैं 7 करोड़ कंपनियां जो हैं उनकी जो लोन की जो अवधि होगी वो 5 साल की होगी और 5 साल के अंदर 1 साल की मॉरेटोरियम भी रहेगा, जिसका मतलब अगर मान लीजिए वो पैसा वापस ना देते हैं उसकी मॉरेटोरियम रहेगी और एयरलाइन के लिए 2 साल की मॉरेटोरियम रहेगी। और ये व्यवस्था आज से मार्च 31, 2027 तक लागू रहेगी, इसका मतलब अगले 1 साल करीबन 11 महीने या 10 महीने तक ये व्यवस्था का उपयोग एमएसएमई कंपनियां, विमानन कंपनियां और बाकी बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकर पूरी तरह से उनको बहुत बड़ा एक राहत जरूर मिलेगा
1: जी।
0: उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं ये राहत तो मिलेगा पर ऐसी 2.5 लाख करोड़ की राहत से बहुत लोग इनका शंका होता है कि सरकार की जो खजाना जो है खजाने में कितनी बहुत, पर क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो एक बहुत बड़ी एक खूबी है ये कि 2.5 लाख करोड़ का लोन तो व्यवस्था की गई है पर सरकार के खजाने में इसका इम्पैक्ट सिर्फ 18,000 करोड़ का ही होगा और जिनको मॉरेटोरियम के बाद जरूरत होगा 2 साल का मॉरेटोरियम जो विमानन कंपनी की होगी या की कंपनी का 1 साल का मॉरेटोरियम है उसके बाद अगर वो पैसा वापस दे देते हैं अच्छी बात है और अगर गारंटी की जरूरत होगी उसके लिए इंश्योरेंस का भी व्यवस्था होता है तो मैं समझता हूँ इतने कम रिस्क से 2.5 लाख करोड़ की जो एक वर्किंग कैपिटल की जो प्रावधान की गई है इससे बहुत बड़ी एक राहत नौकरी की व्यवस्था और सबसे बड़ी बात जिसकी जिक्र आपने की निर्यात का एक प्रोत्साहन दिया जा सके।
1: जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे भट्टाचार्य जी कि जिस हिसाब से लगातार सरकार की कोशिश रही है कि कारोबार जगत को मुश्किलें उनकी जो है वो आसान की जाएं, तो ये मोरेटोरियम और जो क्रेडिट गारंटी का ड्यूरेशन समय अवधि ये बढ़ाई गई है ये स्थिरता किस हिसाब से देगी इस पूरे सेक्टर को इस कर्ज के दौरान?
0: देखिए मॉरेटोरियम जो होता है उससे क्या होता है कि जो कंपनी को लोन वापस देने का जो अवधि होती है उसमें जब उनकी अवधि बढ़ जाती है, जैसे कि एयरलाइन कंपनी का 7 साल का लोन है उसके अंदर 2 साल का मॉरेटोरियम भी है, इसका मतलब उनको उसी समय इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी कंपनियों का 5 साल का अवधि है पर उसके अंदर 1 साल का मॉरेटोरियम, उसका मतलब 1 साल तक को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि इससे जो क्रेडिट अवेलेबल होती है, पहली बात तो यह कि ऐसे समय में जब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखती हैं कि कंपनियां जरा दिक्कत में आ गई हैं वो लोन देने में थोड़ा झिझकते हैं कतराते हैं, जब ये स्कीम लागू होता है तब उनको एक आश्वासन मिलता है कि ये लोन देने से भी अगर लोन वापस ना कर सके ये गारंटी मिलेगी और गारंटी सरकार दे रही है, तो ये बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ाता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए और दूसरी तरफ ये कंपनियों को एनकरेज करता है कि वो छटनी ना करे, लोगों को गांव ना वापस भेज दे कि भाई काम नहीं है आप बंद कीजिए, आप उससे बड़ा एक हौसला भी बढ़ता है, इकोनॉमी का एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक्साइज जो डीजल एंड पेट्रोल में उन्होंने घटा दिया था टैक्स और उस घटाने से जो तेल और तेलों के दाम जो रिटेल मार्केट में जो हर देशों में जो बढ़ गए हैं वो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए अभी तक कोई एक्स्ट्रा बर्डन अभी तक नहीं आया है, हालांकि गैस में थोड़ा दाम बढ़ा है बाकी चीजों में दाम बढ़ा है पर पेट्रोल डीजल जो हर इंडस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें कोई दाम नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ ये एक सार्वजनिक एक अप्रोच है जिससे कि अगर ये क्राइसिस चले या ज्यादा दिन ना चले उसके सामने ये टेम्पोररी मेजर्स हैं, वो दो महीने बाद तीन महीने बाद देखना पड़ेगा कि और क्या नीतियों की लागू करना होगा, वो देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खासतौर पर 5,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि

0: एविएशन सेक्टर के लिए अलग से रखी गई है, उसका क्या फायदा आप होते हुए देखते हैं? क्योंकि विमानन कंपनियों का लंबे समय से कहना रहा है कि ATF के बढ़ते दाम उनके लिए दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं, साथ ही जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें तमाम जगहों पे रूट्स बंद हो जाते हैं तो उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, तो जाहिर है उनका खर्च बढ़ता है और किराया बढ़ाने की एक सीमा होती है। तो ऐसे में ये ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर के लिए कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है और वहां की नौकरियों के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अमृत कहे या वरदान कहे बन सकता है?
1: जो विमानन कंपनियां हैं जो बाहर में अपना सेवा कर रहे हैं उनके लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम नहीं देगा। जो हमारे देश में जो अपना सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा काम आएगा उनका, क्योंकि उनकी ATF की प्राइस एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम तो बड़ी है और उनके जो फेयर्स थोड़े बहुत फेयर भी बढ़े हैं, पर उसके बावजूद बाकी सारे ऐसे कॉस्ट हैं उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो विमानन कंपनियां को ये नहीं कि पैसा उनको दे रहे हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी उसके ऊपर सरकार गारंटी देगी। उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर और या बैंकिंग व्यवस्था जो है एयरलाइन कंपनियों को लोन दे सके, कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उनको आश्वासन मिलेगा कि ये लोन वापस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि विमानन कंपनी को कठिनाई तो हो रही है, पर ये एक ऐसा समय है कि ये 2 साल का मॉरेटोरियम और 7 साल का लोन के ऊपर गारंटी, मैं समझता हूँ इसमें हौसला बढ़ाने का बात है, पर एयरलाइन को कठिनाई तो जरूर हो रही है, होती रहेगी जब तक ना तेलों के दाम नीचे ना आए।
0: आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन उद्योगों के लिए खासतौर पर ये राहत का ऐलान किया गया है उससे जुड़े तमाम सेक्टर हैं जो इनसे प्रभावित होते होंगे, क्या आपको लगता है उन्हें भी और एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा?
1: देखिए ऐसा होता है कि अगर 7 करोड़ कंपनियां हैं हमारे देश में, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो MSME सेक्टर में कंपनियां हैं, करीबन 99% जो कंपनियां जो हैं वो छोटी लघु उद्योग है, बहुत ही माइक्रो यूनिट्स हैं वो, और उसमें 5 से 10 लोग काम करते हैं, और यही MSME कंपनियां बड़े बड़े कंपनियों को सप्लाई करती हैं, करीबन 40% एक्सपोर्ट्स करती हैं, निर्यात करती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनमें ये गारंटी मिलेगी, इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स में गारंटी मिलेगी तो उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ी बहुत उनकी सहूलियत होगी, और उसका बेनिफिट जो जो कंपनियां उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, रिलेशनशिप रख रही हैं, उनको भी एक सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
0: घरेलू विमानन कंपनियों के लिए या विमानन कंपनियों के जो घरेलू ऑपरेशंस हैं उन पर फायदा पहुंचने की बात आपने कही, तो तमाम कंपनियों की एक विस्तार योजनाएं थी कि वो घरेलू स्तर पर नए रूट खोलें, तो वो एक तरह से ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, या कंपनियों का जो बढ़ता खर्चा था उससे उन्हें आशंका थी कि अब आगे वो क्या करें, तो अब आपको लगता है वो तमाम चुनौतियां काफी हद तक हल हो रही हैं?
1: मैं ये समझता हूँ कि विमानन कंपनियों ने अपनी जो विदेश की जो उनके सर्विसेज जो हैं उनमें रोक लगा दी गई, और जो डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर अंतर्देशीय जो सेवाएं जो हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रसार नहीं होगा, पर जो अभी भी सर्विसेज चल रही हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये जो स्टेप्स जो है वो स्टेप उसी लिए लिया गया है, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज हैं उसमें कोई हानि नहीं पहुंची, धक्का नहीं पहुंचेगा, पर विस्तार करना या प्रसारण करना और भी इसको बढ़ाना उसमें मैं समझता हूँ कि ये चीज विमानन कंपनियां अब उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगी, क्योंकि ये समय ऐसा है जो इसको एसेस करने के लिए समय लगेगा, पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। ये गारंटी स्कीम का यही एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा।
0: और सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये 2 साल का एक पूरा का पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है छोटी मझोली कंपनियों के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस इतने दिनों से चल रहा है, 2 महीने के करीब का वक्त हो रहा है और उससे भी ज्यादा समय हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जितना एक असर था उस असर से निपटने के लिए मददगार होगा, या और भी आने वाले दिनों में चुनौतियां आएंगी तो उसके लिए नए कदम उठाने की भी जरूरत रहेगी?
1: मान लीजिए ये युद्ध विराम अभी हो जाता है या कोई पीस पैक्ट कल परसों तरसों में हो जाता है, तो उसके बाद भी कंपनियों की समस्याएं जो हैं वो करीबन 6 महीने 1 साल तक चलेगा। इसीलिए ये स्कीम को मार्च 31, 2027 तक लागू किया गया है। और इसीलिए एक साल का मोरेटोरियम दिया गया है कंपनियों को और विमानन कंपनियों को दो साल का मोरेटोरियम दिया गया है और ये लोन सात साल के दिया गया है विमानन कंपनियों को और कंपनियों को पांच साल का विमानन दिया है। एमएसएमई कंपनियों को अपने 20% जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर

0: बेस करके 100 करोड़ की जो लोन जो है वो देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विमानन कंपनियों को 1500 करोड़ तक की लोन गारंटी की व्यवस्था की गई है। तो इसका कारण यही है कि जो वेस्ट एशिया का अगर कॉन्फ्लिक्ट आज भी अगर सुधर जाए तो मैं समझता हूं कि जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो अभी भी चलता रहेगा, 6 महीने तक चल सकता है, 7 महीने तक चल सकता है, उसके बाद ही अवस्था साधारण में पहुंचेगी।
1: बिल्कुल भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी दी और काफी बेहतरीन सरल तरीके से इन बातों को समझाया।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: कंट्री वाइड।

0: ये आकाशवाणी है, अखिल भारतीय प्रादेशिक लोक संगीत एवं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको श्री राजेश सोदातर के गुजराती लोकगीत सुनवाएंगे। सोदातर राजेश जगदीश चंद्र अहमदाबाद गुजरात के एक जाने माने गुजराती लोक गायक और लोक नृत्य निर्देशक है। उन्होंने गुजराती भाषा में स्नातक की डिग्री हासिल की है और एक कलाकार के तौर पर संगीत, रेडियो और टेलीविजन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। करीब 80 से ज्यादा गुजराती एल्बमों और कई टीवी और रेडियो मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने लोक कलाओं के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। वे लोक नृत्य और गायन के क्षेत्र में अंतर विश्वविद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय युवा उत्सव में कई बार विजेता रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरे भारत में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक उत्सवों में निर्णायक जज की भूमिका भी निभाई है। श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री राजेश सोदातर के आकाशवाणी के 90 वर्ष की प्रसारण यात्रा पर अपने विचार।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी को गौरवशाली 90 वर्ष पूरे करने पर हार्दिक बधाई। यह भारतीय संगीत और संस्कृति का एक प्रकाश स्तंभ है। आकाशवाणी के साथ मेरी यात्रा सचमुच यादगार रही है। मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश सोदातर कामना करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी इसे निरंतर सफलता मिलती रहे। अस्तु।
0: आज के कार्यक्रम का आरंभ श्री राजेश गुजराती लोकगीत आवी रूड़ी अजवाड़ी रात से कर रहे हैं। आवी रूड़ी अजवाड़ी रात एक प्यारा गुजराती लोकगीत है जो प्यार, प्रकृति और चांदनी रात की कोमल भावनाओं को खूबसूरती से चित्रित करता है।

श्रोताओं, आइए आज के कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक ऐसा गुजराती लोकगीत जिसमें बांसुरी की सुर लहरियों के साथ प्रेम और ग्रामीण जीवन की सरल भावपूर्ण झलक मिलती है। गीत के बोल हैं, रूड़ी ने रंगीली रे वाला तारी वहां सड़ी।

अब प्रस्तुत है श्री राजेश सोताधर की मधुर आवाज में एक भावपूर्ण गुजराती लोकगीत कृष्ण भगवान चाल्या द्वारिका, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारका गमन की और भक्तिभाव की सुंदर झलक मिलती है।

आइए अब सुनते हैं एक मधुर और भावनात्मक गुजराती लोकगीत अमे मैयारा रे गोकुल गामना, जिसमें गोकुल में भगवान बाल कृष्ण ने गोपियों के साथ की दान लीला का सुंदर वर्णन है।

कार्यक्रम के समापन पर राजेश अपनी मधुर प्रस्तुति में जवेरचंद मेघाणी रचित अमर लोकगीत कसुम्बिनो रंग सुनाएंगे, जो शौर्य और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है।

0: इसी के साथ अखिल भारतीय प्रादेशिक लोक संगीत एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में गुजराती लोक संगीत संपन्न होता है। आज के कार्यक्रम में श्री राजेश सोढ़ातर के साथ संगत कर रहे थे तबला पर भूपेंद्र सोलंकी, देवांग पंचाल ढोलक पर, मंजीरा पर कांति भाई सोलंकी, बेंजो पर नरेंद्र सोयंतर, वायलिन पर विजय वाघेला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के अगले भाग में आप सुनेंगे गजल।
1: ये आकाशवाणी है। आज के सुगम और लोक संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में भारत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद मोहम्मद वकील प्रस्तुत करेंगे गजल। उस्ताद मोहम्मद वकील एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं। शास्त्रीय गजल गायकों के परिवार से आने वाले उस्ताद मोहम्मद वकील अपने परिवार की संगीत परंपरा से प्रेरित हैं। आपने 8 साल की छोटी उम्र में ही मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी और एक गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने का निश्चय कर लिया। गजल के उस्ताद मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन, जो आपके मामा हैं, से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उस्ताद मोहम्मद वकील ने स्वयं भी गजल

0: के उस्ताद के रूप में शीघ्र ही अपनी कला को निखारा। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप आकाशवाणी के उच्च श्रेणी कलाकार हैं। प्रिंस ऑफ गजल पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपको लंदन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किया गया। आज की सभा में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष झा, इलेक्ट्रिक गिटार पर अजय मिश्रा, कीबोर्ड पर अजहर हुसैन वारसी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान। आप अपनी प्रस्तुति का आरंभ शाइदा अराई की गजल से कर रहे हैं। बोल हैं, दिल की जालिब दीवार मत रखना।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट द गजल रिसाइटल बाय उस्ताद मोहम्मद वकील, टुडेज रिनाउंड गजल सिंगर। उस्ताद मोहम्मद वकील इज अ वेल नोन प्लेबैक सिंगर। हेलिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ क्लासिकल गजल सिंगर्स, उस्ताद मोहम्मद वकील वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज फैमिलीज म्यूजिकल ट्रेडिशन। ही गेव हिज फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस एट द टेंडर एज ऑफ 8 एंड डिसाइडेड टू मेक हिज मार्क एज अ सिंगर। आफ्टर रिसीविंग ट्रेनिंग फ्रॉम द माएस्ट्रोज ऑफ गजल मोहम्मद हुसैन एंड अहमद हुसैन, हु आर हिज मैटरनल अंकल्स, मोहम्मद वकील soon polished his art to become a maestro of ghazal himself. Ustad Mohammad Wakil received many prestigious awards. He is a top-grade artist of Akashwani. Honored with the Prince of Ghazal Award, honored by the World Humanitarian Organization at the prestigious House of Lords in London. Tonight, Ustad Mohammad Wakil is accompanied by Ashish Jha on tabla, and Ajay Mishra on electric guitar, Azhar Hussain Warsi on keyboard, and Ustad Farooq Latif Khan on sarangi. Ustad Mohammad Wakil begins his recital with a ghazal, Dil Ki Janib Deewar Mat Rakhna, written by Shaida Arai.

0: आप सुन रहे थे शाइदा अराई की गजल, जिसे स्वरबद्ध किया था उस्ताद मोहम्मद वकील ने। आइए अब सुनते हैं मोमिन खान मोमिन की गजल, असर उसको जरा नहीं होता।
1: दैट वॉज अ गजल रिटन बाय शाइदा अराई एंड कंपोज्ड बाय मोहम्मद वकील। नाउ ही प्रेजेंट्स गजल असर उसको जरा नहीं होता, रिटन बाय मोमिन खान मोमिन।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।

0: ए विश्व संसार जहाँ सृष्टि ये संसार झील जी स्रष्टा मार किए जन्म इच्छा मार ए कथा जत देवर सिंह मुख रु शुणिला कांदि कांदि सुरेखा आज पद तले लोटी जाऊ महात्मा माँ निकट में मुझ सत्य कर राम प्रतिशोध ने मत दया करतु आपड़ी मत दया न करे मुझ सत्य सत्य त्रिवार सत्य करुच्ची आपण पद छुई नियम कर एक मुहूर्त मु प्राण विसर्जन कर बड़ अड़ुआ पड़गले देवर सिंह डाकिले ठाकुरे सबु जुगरे तुम साथी मोर टे लीला खेला त्रेतया जुगरे तुम साथी मोर टे लीला खेला आउ आज ठाकुर मुझे परीक्षा करी वास्तविक राम पूर्ण ब्रह्म कि पूर्ण ब्रह्म नुहत ए झील राम को ऊपर प्रतिशोध मो द्वारा से कार्य संभव
1: मत
0: उपाय बतई ये निर्जन जंगल मध्य देव

पूजा एवं शिला लिखिछन्ति बालेश्वर सोररु कुरुणियारु लिखिछन्ति आपण माने पागल करिछि पाउंजी तोर कथा चित्रर गोटे गीत शुणिबाक इच्छा करिछन्ति गीतटिके गाइछन्ति निवेदिता एवं सुरेश वाडकर।